0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: It's
11: music never sounded better.
5: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: Hit music. Back to back.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: Hazar 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
16: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: ठहरिए जरा. ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
6: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
5: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
6: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
5: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज से जल्दी कम कर दे रहे सोने दे स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने
6: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
5: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
6: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
5: लो जी ओ भी जुबानी याद है 01156713677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 01156713677.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक
8: 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodpro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot-tapping music.
14: 97.1 FM,
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
16: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ.
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
3: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 87.1 FM एंड टैप पे। जी तो लिसनर्स, जैसा है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 87.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है आपकी और मेरी कम्युनिकेशन एंड देन मिलता है पूरा पूरा इंटरटेनमेंट का डोज। सो द लिसनर्स, हमेशा से ये पूरी कोशिश की जाती है कि इन दो घंटों को आपकी ज़िंदगी के लिए खूबसूरत बनाया जाए और साथ ही साथ हो कुछ इस तरह की गुफ्तगु जिसमें हो पॉजिटिविटी की बात, मोटिवेशन की बात, ऐसी बातें जो आप सुनना चाहते हैं और वो तमाम तर म्यूज़िक जो आप सुनना चाहते हैं। सो डियर लिसनर्स, हमेशा की तरह टीवा डायलॉग में आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इसी तरह की मज़े की बातें और साथ ही साथ आज एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे जो कि टॉपिक मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और आई थिंक सो कि आप सभी को भी उस टॉपिक पे डिस्कशन करके अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपकी और आप भी जानेंगे कि आपका इस टॉपिक के हवाले से क्या कहना है, क्या सोचना है। सो किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं अपनी आवाज़ हम तक, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस इतना करना है कि सबसे पहले हो जाना है एक्टिव ताकि आने वाले दो घंटों की तमाम तर कॉन्वर्सेशन को आप पूरी तवज्जो से सुन सकें और साथ ही साथ उठा लेना है अपना फ़ोन और डायल करना है 01157100971 और साथ ही साथ इस नंबर को कर लेना है सेव। इस नंबर पे जाके आपने अपने नाम के साथ साथ कोई भी प्यारा सा टेक्स्ट या जो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं आज के हवाले से, आप चाहते हैं कि मैं इस बात को शो में शामिल करूं, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड देन पूरी कोशिश की जाएगी कि शो में वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाएँ जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप इस नंबर के थ्रू मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है और आप क्या चाहते हैं कि कौन सा गाना आपके किस प्यारे से चाहने वाले को डेडिकेट किया जाए। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी रिकमेंडेशन को शो में शामिल करूं। ये तो हो गई अब बात कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचा सकते हैं, अब जरा बात करते हैं कि किस तरह से आप हमारी आवाज़ को ट्यून कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप रेडियो फजा 87.1 FM को ट्यून करें, सो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो वो भी शेयर कर देती हूँ आप सभी से, www.radiofaza.com.uk, ये है हमारी डीवा डायलॉग और रेडियो फजा की ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें कर सकते हैं ट्यून बल्कि आप बन सकते हैं रेडियो फजा 87.1 FM की फैमिली का हिस्सा। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला और जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनके हवाले से भी हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है। और अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 87.1 FM। सो सबसे पहले अगर तो हैं आप एप्पल यूज़र या फिर हैं आप एंड्रॉयड यूज़र, सो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर। वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 87.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी यानी रेडियो फजा 87.1 FM की एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। सो डियर लिसनर्स, हमेशा की तरह जिस तरह से मैं कहती हूँ कि डीवा डायलॉग का हम स्टार्ट करते हैं कुछ एनर्जेटिक से,
सो आज भी ये स्टार्टअप लेते हैं कुछ एनर्जेटिक म्यूजिक के साथ और शो में ऐड करते हैं कुछ ऐसा म्यूजिक जो कि हो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक। सो जैसे ही आप इस खूबसूरत से ट्रैक को सुनें तो आपके अंदर भी एक एनर्जी की लहर दौड़ पड़े। सो स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ एंड देन शो में शामिल करेंगे बहुत सारी बातें और कुछ आपकी बातें, कुछ अपनी बातें और आज के दिन के हवाले से हर तरह के पहलू को करेंगे डिस्कस डीवा डायलॉग में। लेकिन फिलहाल के लिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। वेल, जहां मैंने बात की है कि एनर्जेटिक ट्रैक, तो आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि मैं किस ट्रैक की बात कर रही हूँ। वेल, जो मेरे सभी लिसनर्स हैं जो मुझे डेली बेसिस पर सुनते हैं, सो वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं कि ज़ैनब को किस तरह का म्यूज़िक एनर्जेटिक लगता है। सो जहाँ भी मैं बात करूँ कि हम एनर्जेटिक म्यूज़िक सुनते हैं तो वहीं सबसे पहले द टॉप ऑफ द लिस्ट आता है वीकेंड। सो वीकेंड सॉन्ग्स ही लगाने जा रही हूँ। वेल, अब देखते हैं कि मैं कौन सा गाना लगाती हूँ। सो आइए मिलकर सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सो अब जहाँ भी हैं, चाहे आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठे हुए हैं, या फिर आप जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक सोच रहे हैं, सो सबसे पहले जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा पॉज लें खुद को दुनिया की तमाम तर टेंशनों से कर दें आज़ाद, क्योंकि ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम है कि आप कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल करते रहें, कॉन्टीन्यूसली काम करते रहें। तो अगर आप उन तमाम तर चीज़ों को, उन तमाम तर बातों को अपने ही मन में सोचना शुरू कर देंगे, तो आपको वो तमाम तर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगेंगी। सो अगर आपने कोई भी काम करना है या फिर किसी नए काम का करना है आगाज़, तो सबसे पहले एक पॉज लें। पॉज लेने के बाद आराम से सांस लें और फिर उस काम की तरफ लग पड़ें, क्योंकि काम करना ही करना है। सो अगर आप पहले से सोचते रहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, तो वो काम कभी भी नहीं स्टार्ट होगा। सो बस शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा और फिर आ जाएगा थर्ड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप पर पहुँच कर आपको ऐसे लगने लगेगा कि अच्छा, ये जो काम आपने शुरू किया था किस कदर मुश्किल लग रहा था, फाइनली अब ये होने वाला है कम्प्लीट। सो कुछ इसी तरह के स्ट्रेटजीज मैं भी अपनाती हूँ जब भी मुझे करनी होती है एग्ज़ाम की तैयारी। असल में होता यह है कि जब भी कभी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर मैं पहले से ही स्टार्ट कर दूँ ओवरथिंक करना कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अभी तो मुझे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, सो एक दिमाग में टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट ये नहीं सोचती कि कैसे होगा, कब होगा, बस मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक बार स्टार्ट कर दूँगी तो वक्त लगेगा, लेकिन एक स्टेप आएगा कि जब काम फाइनली ख़त्म हो जाएगा।

वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि नेचर बिल्कुल एक मेडिसिन की तरह है। आप जितना ज़्यादा वक्त नेचर के गिर्द गुजारेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। सो नेचर सिर्फ हमें सुकून नहीं देती बल्कि कुदरत हमारी सबसे बड़ी टीचर भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो नेचर हमें ज़िंदगी जीने का सबक देती है और भी बहुत कुछ सिखाती है। एक दरख्त को देखें, वो कभी जल्दी में नहीं होता। एक बीज ज़मीन के अंधेरे में महीनों रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है और गर्मी और सर्दी इन तमाम तरह के मौसम्स को बर्दाश्त करता है। और साला साल लगते हैं एक पौधे को दरख्त बनने में और एक बीज को पौधा बनने में। सो नेचर टीच्स अस गुड थिंग्स टेक टाइम। सो ऑल यू हैव टू नीड इज ट्रस्ट योर प्रोसेस। अच्छा, जहां हम मौसमों की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, वहीं अब बात करते हैं हज़ा की। सो हज़ा का मौसम दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है, क्यों? ताकि स्प्रिंग में नए पत्ते खूबसूरती से उग सके। सो ये चीज़ हमें किस तरफ इशारा देता है कि कुदरत हमें ये सिखाती है कि पुरानी तमाम तर चीज़ों को एक टाइम पीरियड के बाद लेट इन गो करना पड़ता है, चाहे उन चीज़ों के साथ हमारी कितनी ही अच्छी मेमोरीज क्यों ना जुड़ी हों, हम कितना ही उनके साथ अटैच क्यों ना हो, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, ज़िंदगी को महज खूबसूरत बनाया जाए, सो हमें पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ों को मौका देना पड़ता है। सो ये तो हो गई एक सिंपल सी एग्जांपल जो कि मैंने आपको मौसम हज़ा से दी है। अब ज़रा बात करते हैं सूरज की। तो कभी आप सबने ये चीज़ देखी कि सूरज कभी ये नहीं देखता कि वो किस पर रोशनी डाल रहा है, वो हर जगह इक्वली रोशनी देता है। सो नेचर हमें सिखाती है कि बिना कहे रही दूसरों के काम आओ। आपको हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि आया इस काम को करने से मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा या ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है। एज़ लॉन्ग अगर आपकी एक छोटी सी एफर्ट किसी दूसरे के लिए बन सकती है, बहुत बड़ी हेल्प, ज़रूर करनी चाहिए। लिसनर्स, इसी तरह से और भी नेचर से रिलेटेड काफ़ी सारी एग्जांपल्स आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। जिनको हम पूरे इस शो में करेंगे डिस्कस, साथ ही साथ मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ को भी करेंगे ऐड। और आप सभी के लिए, जैसे कि हम नेचर की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, नेचर से जुड़े कुछ इन्ग्रीडियंट्स का लेकर आऊँगी DIY मास्क। आप सभी ने क्या करना है कि बस इसी तरह से रेडियो फजा 97.1 FM का हिस्सा बने रहना है और मुझे ज़ैनब फातिमा को ट्यून करते रहना है। वेल लिसनर्स, अभी हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं जिन्होंने हमें एक सॉन्ग रिकमेंडेशन भेजी है। वो चाहते हैं कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए। सो क्यों नहीं, ज़रूर हमारा काम है कि हम वो तमाम तर म्यूज़िक शो में ऐड करें जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद है। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड अगेन स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक को

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा।

0: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
1: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
0: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
1: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
0: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
1: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
0: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
1: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
0: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
1: पिशावरी डेरा।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
0: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा म्यूजिकल सेक्शन? वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। वेल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम इस तरह से लाइवली बातें शाते कर रहे होते हैं तो फिर दिल करता है कि बीच में लाइट सा म्यूजिक हो जो कि मूड को ऑटोमेटिकली इन्हेंस कर देता है। सो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नेचर से रिलेटेड कि किस तरह से नेचर हमें हील करती है, मोटिवेट करती है, टीच करती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। पर चूँकि हम डेली बेसिस पर इस कदर बिजी होते हैं, ज़िंदगी इतनी फास्ट चल रही होती है कि हम उन तमाम चीज़ों को उस तरह से ध्यान नहीं देते। सो माई लवली डीवाज और सभी लिसनर्स, सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बिजी रूटीन में किस तरह से खुद को नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस सब के लिए ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना पहाड़ों पर जाएं या फिर कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आपको घने जंगल मिले, नेचर मिले, दरख्त मिले। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको ना सिर्फ नेचर के करीब कर देंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशनुमा तब्दीलियां भी लेकर आएंगे। सो सबसे पहले बात की जाती है मॉर्निंग सन एंड ब्रीज की। सो सुबह उठकर कम से कम आपको चाहिए कि आप 10 मिनट्स के लिए बालकनी या छत पर खड़े होकर अच्छे से ताज़ा हवा लें, सुबह की धूप को इंजॉय करें, और रोज़ाना ज़्यादा नहीं लेकिन 5-10 मिनट के लिए खुद को तमाम तर फिक्रों से आज़ाद कर दें और जस्ट नेचर के बारे में, हवा के बारे में, धूप के बारे में सोचें। सो द सेकेंड एक्टिविटी जिसको आप करके नेचर के करीब हो सकते हैं, प्लांट समथिंग। सो इसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा गार्डन हो, लॉन हो, तभी जाकर आप प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर खुद को नेचर के करीब कर सकते हैं। सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अपार्टमेंट में या फिर बैल्कनी में कोई भी छोटे पॉट में कोई भी प्यारा सा, अच्छा सा, खुशनुमा सा पौधा लगा सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे अपने रूम में भी लग सकते हैं। अब आपने बस करना ये है कि आपको डेली बेसिस पर उसकी लुक आफ्टर करनी है, उसे अच्छे से पानी देना है, एंड यू विल सी कि कुछ टाइम के बाद वो पौधा किस कदर घना हो जाएगा और ना सिर्फ वो दिखने में खूबसूरत लगेगा बल्कि आपको नेचर के भी करीब रखेगा। और जब डेली बेसिस पर आप इस तरह के खिलते हुए रंगों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी बूस्ट हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं द थर्ड एक्टिविटी जिससे आप खुद को नेचर के करीब ला सकते हैं। सो द थर्ड एक्टिविटी इज बेयर फुट वॉकिंग। सो शाम को आप किसी भी पार्क या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां आपको ग्रीनरी मिले, यहां आपको ग्रास मिले, आप थोड़ी देर के लिए चहलकदमी कर सकते हैं। इससे साइंटिफिकली आपका स्ट्रेस लेवल खुद बहुत कम हो जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। ना सिर्फ अच्छा फील होगा बल्कि यूं लगेगा कि जिंदगी किस कदर खूबसूरत है। सो लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नेचर इज वेटिंग फॉर यू। अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा वक्त निकालिए और कुदरत को दीजिए। सो वेल लिसनर्स, ये थी वो कुछ एक्टिविटीज़ जिनको करके आप और मैं हो सकते हैं नेचर के करीब। सो हम सभी को ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करें। देखा कितना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट 10-15 मिनट्स लगेंगे और आप खुद को ना सिर्फ रिफ्रेश कर सकते हैं बल्कि नेचर के करीब कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जहां हम थेरेपीज़ की बात करते हैं तो क्या ज़रूरत है उन एक्सपेंसिव थेरेपीज़ की तरफ जाने की, जब नेचर में हम सभी के लिए इतनी अच्छी खूबसूरत सी थेरेपी मौजूद है। सो वेल लिसनर्स, इस हवाले से है आपका क्या कहना? 01157100971 आप इस नंबर के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, विचार, या फिर आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त दुनिया के किस कोने से डीवा डायलॉग को सुन रहे हैं और क्या करते करते सुन रहे हैं।
वेल लिसनर्स, अगर आपके पास भी इस तरह के कोई सजेशंस मौजूद हैं कि किस तरह से आप खुद को नेचर के करीब कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए, तो डू लेट मी नो, मैं वो सब भी लाजमी बाकी लिसनर्स के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि डेली बेसिस पर वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं जिनसे आप रिफ़्रेश रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आपको मिलती है। वेल इसमें जहाँ नेचर की बात की जा रही है, तो आज का मौसम कितना खूबसूरत है, दिलकश है। मतलब नॉर्मली होता है कि हल्की फुल्की सी हीट वेव या फिर वो जो गर्मी का एहसास है वो महसूस होता है, लेकिन आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने एक चीज़ फील की कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा है, खुशगवार है। और इस तरह का जब इंसान मौसम देखता है तो ऑटोमेटिकली इंसान के दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। वो किसी ने कहा था कि अगर इंसान के दिल का मौसम अच्छा हो तो उसे हर तरह के मौसम अच्छे लगते हैं। और अगर आपके दिल का मौसम ही हो वीरान या फिर उदास, तो आपको बाहर के मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मौसम अच्छा है या नहीं। सो आज अच्छा मौसम है, ऐसा मौसम है कि वॉक की जा सकती है। सो आज ही से ये स्टेप उठाइए, इन स्टेप्स को फॉलो करें, वॉक करें और खूबसूरत बन जाएं। सो ये लिसनर्स, आज डीवा डायलॉग में मैं आप सभी के लिए, यानी कि हमारी जितनी भी डीवाज हैं जो कि हमें डेली बेसिस पर सुनती हैं और वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं उनके लिए लाती हूँ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे से मास्क जो कि उनकी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। और द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मास्क इज़ कि वो नेचुरली इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। सो आपको किसी भी तरह के कोई हार्श केमिकल्स को नहीं यूज़ करना पड़ता और ना ही आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होता है, बल्कि नेचुरली आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है। सो लिसनर, जहाँ हम बात कर रहे थे नेचर की, तो नेचर से ना सिर्फ हमें विटामिन सी भी मिलता है। सो जो विटामिन सी हम यूज़ करते हैं केमिकल्स के थ्रू, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो हमें बआसानी बखूबी सूरज के थ्रू मिल जाता है। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि नेचर हम सब के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।

डियर लिसनर्स, आइए शेयर करती हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा जबरदस्त सा DIY मास्क। अच्छा, ये DIY मास्क किस चीज के लिए काम करता है सो बताती चलती हूँ कि ये DIY मास्क काम करता है आपकी स्किन डार्क सर्कल्स के लिए। सो बहुत सारी हमारी डिवास हैं मेरी तरह जो कि स्क्रीन टाइम जिनका है बहुत ज़्यादा, या फिर डेली बेसिस पर ऑफिस में आपको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा काम, वो भी लैपटॉप पर। सो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि किस तरह से जब डेली बेसिस पर हम बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो हमारी आइज़ का बैरियर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं और एक अजीब सी पफिनेस आ जाती है। सो ये DIY मास्क ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को कर देगा दूर, बल्कि जितनी भी पफिनेस होगी उसको भी ख़त्म कर देगा।

सो डियर लिसनर्स, शेयर करती हूँ आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स. सो द मास्क कॉल्ड कैफीन बूस्ट मास्क. सो ये ना सिर्फ इंस्टेंटली ब्राइटन अप करता है स्किन को, बल्कि पफिनेस को भी दूर करता है.

सो इस मास्क के लिए आपको चाहिए सिंपल से दो इंग्रेडिएंट्स जो कि मोस्टली घरों में मौजूद होते हैं. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉफी पाउडर एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज रॉ हनी. सो सबसे पहले आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून कॉफी पाउडर और साथ ही साथ इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून हनी. सो अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स एंड अप कर लेना है. जेंटली इसको अपनी आईज के नीचे आराम से रिंग फिंगर की मदद से लगाना है. लगाने के बाद छोड़ देना है 10 से लेकर 15 मिनट्स तक. सो जिस तरह ही ये ड्राई हो जाए तो आप आराम से इसे कूल वाटर के साथ रिमूव कर लें. इस मास्क को आपने यूज़ करना है वीक में 2 से 3 मरतबा एंड यू विल सी के आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होगा कि डार्क सर्कल्स नेचुरली कम हो रहे हैं, स्किन खूबसूरत लग रही है और साथ ही साथ जितनी भी पफिनेस थी वो भी कम हो रही है. सो इसी के साथ ही एक और DIY मास्क आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ. इट्स कॉल्ड क्यूकम्बर मास्क जो कि बेस्ट होता है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और कूलिंग के लिए. सो इसमें हम यूज़ करेंगे पोटैटोज, साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे क्यूकम्बर. सो पोटैटोज कॉन्टेन नेचुरल इंजाइम्स जो कि एक ब्लीचिंग का काम करते हैं, ठीक है, और टारगेट करते हैं जितनी भी डार्क पिगमेंटेशन होती है. इवन डार्क सर्कल्स ही नहीं बल्कि अगर आपकी स्किन पे भी डार्क पिगमेंटेशन है सो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, साथ ही साथ क्यूकम्बर. अब क्यूकम्बर क्या करता है, वो नेचुरली हाइड्रेट करता है स्किन को. सो मैंने अक्सर जगह पे सुना है कि अगर आपको मेकअप करना हो और आपके पास कोई अच्छा प्राइमर मौजूद ना हो सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, क्यूकम्बर को फुल फेस पे रब कर लें एंड देन उसके ऊपर स्टार्ट करें मेकअप. सो यू विल सी कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करेगी नेचुरली और हाइड्रेट लगेगी. सो अब इस मास्क को डार्क सर्कल्स के लिए किस तरह से यूज़ करना है सो उसका तरीका भी मैं आप सभी को बताती चलती हूँ. सिंपली इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 टेबलस्पून पोटैटो पेस्ट जिसको आपने अच्छी तरह से मैश करके रख लेना है. साथ ही साथ आपको चाहिए 1 टेबलस्पून क्यूकम्बर का भी आपने पेस्ट यूज करना है. सो अब आपने इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और मिक्सअप करके इनका एक जूस तैयार कर लेना है. सो अब आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, सिंपली आपको चाहिए कॉटन पैड्स को आपने इस जूस के अंदर सोक करना है और इसे अंडर आई पे रख देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे रखे रखना है एंड देन 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे आराम से रिमूव कर सकते हैं. और आप देखेंगे कि वीक में 2 से 3 मरतबा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आई साइड है वो बहुत अच्छे हो जाएगी, डार्क सर्कल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे. कोई भी चीज़ है, कोई भी DIY मास्क है, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.

अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसी तरह का एक अदद और मास्क, सो इट्स कॉल्ड द टर्मेरिक एंड योगर्ट मास्क। सो जो ये जो है ये काम करता है लॉन्ग टर्म रेडियंस के लिए, ठीक है, क्योंकि टर्मेरिक में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ब्लॉक करता है मेलानिन को, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड जो कि योगर्ट के अंदर मौजूद होता है जो एक्सपोलिएट करता है डल स्किन सेल्स को। सो अब आपने इस मास्क को किस तरह से अप्लाई करना है, सो अ स्मॉल पिंच आपने यूज़ करनी है टर्मेरिक पाउडर की, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून आपने यूज़ करना है प्लेन योगर्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चीज़ मुझसे पूछते हैं कि जब भी हम कहीं टर्मेरिक यूज़ करें तो क्या हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं? सो नहीं, क्योंकि कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और टर्मेरिक उनकी स्किन में इरिटेशन का काम कर सकता है। सो आपने बिल्कुल भी टर्मेरिक की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं करना, बल्कि जस्ट अ टाइनी अमाउंट इज इनफ फॉर योर स्किन, फॉर योर आईज। सो अच्छी तरह से आपने इनको ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी कर लेना है, अप्लाई करना है इसे अंडर आई पे 10 मिनट्स के लिए, और लाजमी आपने इसे वीक में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, और 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद आप खुद ब खुद रिजल्ट देखेंगे। सो मैंने सोचा जैसा किया है आज मंडे यानी कि स्टार्ट ऑफ द वीक, सो आज ही से हम कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और मेरी बहुत सारी ऐसी लिसनर्स हैं जो इस प्रॉब्लम से हैं शिकार। आपकी बात क्या करूँ, मैं खुद भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा शिकार हूँ, क्योंकि जैसा कि आजकल आप सभी को मालूम है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, काम का स्ट्रेस, इधर उधर का स्ट्रेस और हर तरह का स्ट्रेस। सो इस स्ट्रेस में जैसे कि मैं अब रात में भी देर से सोती हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। अभी रिसेंटली मेरी मामा भी मुझे कह रही थी कि जनब तुम्हें बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, डार्क सर्कल्स का काफ़ी हद तक ताल्लुक नींद से नहीं होता, समटाइम्स ये जेनेटिकली भी होते हैं, और समटाइम्स आप डेली बेसिस पर बाहर जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की वजह से भी हो जाते हैं। सो इसी के लिए मैंने आपसे ये 3-4 DIY मास्क शेयर कर दिए हैं। द फर्स्ट DIY मास्क इज कॉफ़ी मास्क। जी तो लिसनर्स, पहला हमारा कॉफ़ी मास्क है, दूसरा हमारा योगर्ट एंड टर्मेरिक वाला मास्क है, तीसरा हमारा है मास्क पोटैटोज का, और साथ ही साथ क्यूकम्बर का। सो आप इन तीनों में से कोई सा भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको इनमें से किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ना हो। सो बस आपने 2 से 3 मरतबा वीक में इनको यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद मुझसे रिजल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं कि आपको ये मास्क कैसा लगा और इसके आफ्टर और बिफोर इफेक्ट्स कैसे हैं। सो लिसनर्स, किस तरह से आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं, 0115710971 इस नंबर के थ्रू। सो इस नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। वेल, इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ है टीवर डायलॉग में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो दी लिसनर्स, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक, और फिर स्टार्ट करेंगे आज का द स्पाइस किचन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद करती हूँ टीवा डायलॉग में, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। सो जी माय लवली डिवर्स, अब शो में वक्त आ चुका है उस सेगमेंट का जिसका आपको, मुझे, बल्कि हम सभी को रहता है बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि इस सेगमेंट में ना सिर्फ बात होती है खानों की, बात होती है स्पाइसेस की, साथ ही साथ कुछ इस तरह की रेसिपीज जो कि होती तो है बहुत सिंपल सी, लेकिन जब हम जाते हैं किसी भी 5-स्टार होटल या रेस्टोरेंट तो हमें लगता है कि ओ वाओ, इनको बनाना किस कदर मुश्किल होगा। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी ही एक रेसिपी। सो वेल, आप तब तक गेस करें कि आज हम किस चीज़ से रिलेटेड कुछ बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक ब्रेक लें, कोई भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें और अपनी जल्दी से कॉपी, नोटबुक या फिर डायरी ढूंढ लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं तो आप साथ ही साथ नोट कर लें और कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। सो जितनी देर में आप इंग्रेडिएंट्स को करते हैं नोट, तब तक के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूं। तो तब तक आप ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करें एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं द स्पाइस किचन को।

नमस्ते तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं द स्पाइस किचन। सो जो रेसिपी आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ, इट्स कॉल्ड क्रीमी टिक्का मैक्रोनी मसाला। आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कुछ यूनिक सा फ्यूजन लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसको ट्राई करेंगे सो आप ये ज़रूर कहेंगे कि वाओ इट्स रियली अमेजिंग। और ये रेसिपी कुछ इस तरह की रेसिपी है जो कि डेली बेसिस पर आपने कभी ट्राई भी नहीं की होगी, तो आपको एक नया मुनफरद और अलग सा टेस्ट मिलेगा।

सो अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए. सो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन मैरिनेशन के लिए कुछ अदद इंग्रेडिएंट्स. सो उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 250 ग्राम्स, जिनको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे. टिक्का मसाला 1.5 टेबलस्पून, योगर्ट 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून. अब बात करते हैं उन सभी इंग्रेडिएंट्स की जो कि जरूरी हैं पास्ता और सॉस के लिए. सो इसके लिए हमें चाहिए मैक्रोनी 2 कप्स, ऑयल या बटर 2 टेबलस्पून, गार्लिक 1 टेबलस्पून, अनियन 1 अदद जो कि बिल्कुल बारीक चॉप कटा हुआ हो, कैप्सिकम 1 छोटी, टमाटो पेस्ट या फिर प्यूरी 3 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 4 टेबलस्पून, मिल्क 1.5 कप, ओरिगैनो 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, सॉल्ट हसबे ज़रूरत हसबे जायका, एंड लास्टली मोज़रेला चीज़ 1.5 कप. अच्छा वैसे मोज़रेला चीज़ टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसके बिना भी रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई एम अ चीज़ लवर, सो मैं इसको लाजमी ऐड करूँगी. सो जी लिसनर्स, ये थे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स, एंड आई थिंक सो कि ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं. सो लेकिन अगर फिर भी कोई इंग्रेडिएंट्स आपसे हो गया हो मिस, तो घबराने की कोई बात नहीं है. 0115-7100971 आप इस नंबर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तमाम तर इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से बता दूंगी, और इस हवाले से अगर कोई भी क्यूरी हो तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की हैं रेसिपीज पसंद. सो जी हम वही तमाम तर रेसिपीज को डीवा डायलॉग का हिस्सा बनाएंगे. सो डियर लिसनर्स, अब इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब जरा बात करते हैं इसके प्रोसीजर की. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जिसमें हम करेंगे पास्ता को बॉईल. सो एक बर्तन ले लेंगे जिसपे हम थोड़ा सा पानी उबाल लेंगे. अब ये डिपेंड करता है पास्ता की क्वांटिटी पे. सो जैसे कि यहाँ हम यूज कर रहे हैं पास्ता, हम यूज कर रहे हैं पास्ता 2 कप. सो 3 कप काफ़ी है पानी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इससे ये होगा कि पास्ता जो नहीं है वो ओवर कुक हो जाएगा. सो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही साथ 1 टीस्पून ऑयल. इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें हम पास्ता डाल देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे. सो जैसे ही आपके 8 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाएं तो आप चेक कर सकते हैं, अगर तो आपका पास्ता थोड़ा सा टैंगी हो तो इट मींस इट्स ओके, लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको बॉईल कर सकते हैं. सो जैसे ही आपका पास्ता बॉईल हो जाए, अब आप क्या करें, पानी को निकाल कर साइड पर कर दें और पास्ता को किसी दूसरी जगह रख दें. अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की. सो इस स्टेप में हम अपने चिकन को कुक कर लेंगे. सो चिकन क्यूब्स में टिक्का मसाला, दही, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे शामिल. सो इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे. अब पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही साथ वो वाला चिकन जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था. सो इसे तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए. सो जैसे ही हमारा चिकन हो जाए रेडी, अब आ रही आती है स्टेप नंबर 3 की जाने बढ़ने की. सो स्टेप नंबर 3 में हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम बटर या फिर कुकिंग ऑयल को कर लेंगे गरम. अब इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ लहसुन, जिसको 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे. सो जैसे ही हमारा लहसुन सॉटे हो जाए, शामिल कर देंगे प्याज, कैप्सिकम और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे. फिर बारी आती है टोमेटो पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने की. सो ये शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे. याद रखिएगा कि आपने बिल्कुल आराम आराम से मिक्स करना है, तेज़ी से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह से सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी, टूट जाएंगी और वो दिखने में भी बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं दिखेंगी.
सो अब आई आती है अगले स्टेप यानी कि क्रीमी मिक्स की जाने बढ़ने की। सो चूल्हा हल्का कर देंगे और फ्रेश क्रीम और दूध दोनों को एक साथ शामिल कर देंगे। सॉस को एक मिनट के लिए पकने देंगे जब तक वो स्मूथ और थोड़ी सी थिक हो जाए। अब इसमें पहले से तैयार चिकन और वो बॉइल्ड पास्ता शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स ताकि हमारी सॉस और पास्ता वो बहुत अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो जाए। सो टाडा, फाइनली हमारा ये रेसिपी हो गई तैयार। अब आ जाती है बस इसको फाइनल टच देने की। सो ऊपर से ओरिगैनो, मोजरेला चीज़, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को स्प्रिंकल कर देंगे। फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और पैन को 2 से लेकर 3 मिनट तक के लिए ढक कर रख देंगे ताकि चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। सो गर्मा गर्म क्रीमी टिक्का पास्ता हो गया तैयार। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं। चाहे तो आप इसे गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं या चाहें तो आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक चीज़ है जो आप सभी कहेंगे कि वाओ डिलिशियस, क्योंकि इस पास्ते का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इसमें आपको चिकन के चंक्स मिलेंगे, साथ ही साथ पास्ता मिलेगा, पास्ता के साथ एक क्रीमी रिचनेस एंड देन वेजिटेबल्स। सो माई लव लेडी, बस इंतजार किस बात का है, आज ही इस मजेदार सी रेसिपी को करें ट्राई। ट्राई करने के बाद मुझसे लाजमी अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भी इस तरह की अच्छी अच्छी सी मजेदार सी रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कोशिश पूरी यही की जाएगी कि डीवा डायलॉग में हम उन सभी रेसिपीज के बारे में बात करें जो कि आप सभी को है पसंद।

लिसनर्स, अभी जब ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी तो शेयर करते करते मुझे एकदम से लग गई भूख और दिल कर रहा है कि बस अब खाना शुरू कर दिया जाए और शो को हैदराबाद कर दिया जाए। लेकिन अभी वक्त थोड़ा सा ही रह गया है आपको और मुझे साथ में, सो एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि हमारे आज के शो का जो मेन मोटिव था वो ये था कि किस तरह से हम खुद को नेचर के करीब कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा कर सकते हैं जिनसे नेचर के करीब जाया जा सके। सो द आंसर इज़ यू डोंट नीड टू हैव टू गो टू द माउंटेन्स और क्लाइंब माउंटेन्स, यू जस्ट नीड, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, एक छोटा पौधा लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक पूरा बाग बनाएं जिसमें जाकर ही आप नेचर के करीब जा सकते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके DIY मास्क बना सकते हैं और अपनी स्किन को खूबसूरत ग्लोइंग बना सकते हैं, सो वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलोराज की सोलसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आता है ठीक ठीक 2 बजे तक। मतलब उसी के साथ साथ जो है वो मैंने सोचा कि ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। मंडे का दिन है, सो बताइएगा दिन कैसा गुजर रहा है। दोबारा उस रूटीन पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑफिस की तरफ निकल आए हैं और आते साथ थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो सुबह नॉर्मली सबका उठ के ही मूड ख़राब होता है, लेकिन 2 छुट्टियों के बाद यानी कि वीकेंड के बाद दोबारा उस रूटीन पर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना पंजाबी औखा हो जाता थोड़ा सा, वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत आएंगे। बताइए कि वीकेंड कैसा गुजरा, वीकेंड पे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कौन आया कौन नहीं आया, और कहाँ जाने का प्लान था जो फ़ौरन से कैंसिल हो गया। बस मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है, और मैंने सोचा था कि मैं सोचा नहीं था बल्कि आपको बताती हूँ कि मैं जो अपनी वीकेंड की रूटीन में डेली उस टाइम पे जो एक्टिविटी करती हूँ वो मैं आपके साथ आके शेयर करती हूँ। डेली रूटीन की भी एक्टिविटी जो होती है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जो वीकेंड की एक्टिविटी मेरी होती है ना उसको भी आपके साथ आके शेयर करती हूँ। लेकिन इस वीकेंड कुछ खास ही एक्टिविटी नहीं रही, क्योंकि मेहमानों का आना जाना ही लगा रहा है, और अभी तक जो है वो अभी तक मेरे ख्याल से लगा होगा, क्योंकि हम तो आगे आपकी तरफ घर का कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं। बस खैर आप बताइएगा कि वीकेंड आपका कैसा गुजरा, पर मुझे तो बहुत मज़ा आया यकीन करें। अभी जो है वो प्रोग्राम मेरे पास एक ट्रैक की फरमाइश भी आई है, और फरमाइश जो है हमेशा की तरह भला किसने किया आप मुझे गेस करके बताइएगा।
1: कर मेरे मसले दा हल बलिए नी चेहरे तेरे ते अख टिकी मुटिया।
0: चांदनी जी ने हमेशा की तरह हमसे फरमाइश की है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनकी फरमाइश को रद्द कर दें। और साथ ही में उन्होंने ये भी बोला है कि कैसी हैं आप सलोराज, नमस्ते जी जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइएगा आप कैसी हैं। वीकेंड आपका कैसा गुजरा, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, और आप बताइएगा कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, और वीकेंड पे कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए, कौन घर आया क्या बनाया क्या खाया, मुझे लाजमी बताइएगा।

वेल अभी जो है एक और छोटा सा मैसेज हम तक पहुंचा है और मैसेज हम तक बड़ी खूबसूरती पर्सन ने पहुंचाया है सारा ने। हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप बताएं आप कैसी हैं। हम बिल्कुल फिट फाट हैं। अली हमें सुन रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अली ने सलाम ही करना था, उसके बाद भाग गए, पता नहीं कहाँ। अहमद हमें सुन रहे हैं जी पाकिस्तान से, कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत मज़े का चल रहा है। थैंक यू थैंक यू। बस मेरी फरमाइश को भी पूरा कर दीजिएगा। क्यों नहीं भाई, आपकी फरमाइशों को हमें क्यों पूरा नहीं करना।

नोटिंगम से हमें सुन रहे हैं जी, अलियाना ने हमें मैसेज किया है. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं आई एम गुड. आप बताइए कि आप कैसे हैं. आप बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है. लीजिए, हमने भी बोला ही था कि अली जो है वो सलाम करके चले गए, लेकिन अली ने फरमाइश कर दी ट्रैक की, पर उससे पहले जो है वो चांदनी जी की फरमाइश को पूरा कर देते हैं. मेरे पास ट्रैक जो है वो मेरे ख्याल से ओल्ड है, बट जो है वो है भी पंजाबी में कि आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, सारे की कुछ इस तरह का वर्ड होता है ना. सायराई की मेरे ख्याल से ये वर्ड होता है जो भी होता है. मुझे पंजाबी नहीं आती भाई, आपने मेरी पंजाबी का मजाक नहीं उड़ाना. पास रहती है. अभी जो है ना वो इस ट्रैक को सुनते हैं. ये ट्रैक मेरे ख्याल में जीशान रोकड़ी के जो वालिद साहब थे ना, उनका ये ट्रैक था. बट अब वो मेरे हमारे दरमियान नहीं है, पर हम उनके ट्रैक को जरूर सुनेंगे. मुझे उनका नाम नहीं ना आ रहा, तो इस वजह से मैंने फिर उनके बेटे का नाम ले दिया. कल आई सुनते हैं इस ट्रैक को. इस ट्रैक इसको रहेगी आपसे मुलाकात वापसी पर आकर, लिए आपकी फरमाइश को भी प्रोग्राम में शामिल कर देंगे. अभी तक के लिए स्टे ट्यून फजल 97.1 FM एंड ऐप. मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सलूराज की। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आया था ठीक ठीक 2 बजे तक। और अभी प्रोग्राम में जो है मैंने चांदनी जी की फरमाइश पर एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा, यानी कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। वेल, आप ये कर सकते हैं, वो हम बताना तो भूल गए प्रोग्राम का आगाज के दौरान, उस टाइम पे मेरी उस तरह से आपसे बात नहीं हो सकी कि प्रोग्राम में आप शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ा ही आसान सा है, 01157100971। एक खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk के आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आज किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है सवाल, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। या फिर हमेशा की तरह आप भी अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं तो हम हमारे मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक बड़े खूबसूरत सा वोकल बॉक्स दिया है और हमें इस वोकल बॉक्स को इस्तेमाल भी करना चाहिए। पर कोई पैगाम किसी प्यारे का नाम करवाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, कोई ट्रैक किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें तो तब भी मैं हाजिर हूँ, और अगर कोई नसीहत किसी को देना चाहें जिसके लिए आप दे जाते हैं कि आप उस इंसान से सही से बात नहीं कर पाते उस तरह खुल के, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन तक उन्हें सीध पहुंचा दूंगी। और क्या मतलब, और अगर कोई ट्रैक आप हमें डेडिकेट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। बट जो घर बैठी है वह 3 बजे सुनी है, बताइएगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। अगर कोई रेसिपी समझ में नहीं आ रही है, कोई रेसिपी मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैं मुझे बताइएगा, मैं आपको लाजमी बता दूंगी। या फिर अपनी रेसिपी हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि मैं आगे अपने प्यारों तक शेयर करूँ तो मैं उसको भी कर दूंगी। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, जान है तो जहान है। अभी गपशप का सिलसिला वही है कि मज़ा जब आने लगता है तो या तो टाइम ख़त्म हो जाता है या फिर कमर्शियल ब्रेक हाल हो जाती है, और उसी के साथ साथ उसी तरह जो है ना, आज फिर से जो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में हाल होने वाली है, और फिर उसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। इसके उस पार जब हम मिलेंगे तो ढेरों गपशप करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर हम जो फरमाइश हमारे पास मौजूद है उसको पूरा करेंगे। सो बस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक को इन्जॉय कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।
1: इट्स कमर्शियल टाइम। हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाई कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना, चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंगम, ND7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local

0: भेड़ा मैं सब ले। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर सबको शामिल करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च। आवाज आप सुन रहे हैं सर आज की मिनट पर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती हैं। मतलब भी गपशप उस तरह से नहीं, प्रोग्राम की गिर पास फरमाइशें बहुत ज़्यादा थी तो मैं सोचा क्यों ना उनको पूरा कर दिया जाए। अभी जो है वो जिन नए लोगों ने आज रबी फजन एंड 7.1 एफएम को ट्यून किया, बेचुक के आप तमाम नई समातों का प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। 01157100971 इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। और अभी जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है वो है म्यूजिक का, क्योंकि मैंने फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट रखा होता है म्यूजिक का, क्योंकि बाकी उस तरह मैं आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करवाती, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है कि आखिरी जो लास्ट सेगमेंट होता है ना उसमें मैं आपकी फरमाइशें पूरी करूँ। वक्त भी काफ़ी कम है और ये वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, इट्स मीन के वक्त जो है ना वो वक्त से चलती है ये गाड़ी। सो वक्त हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा कम है। अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें अभी भी तो आप करवा सकते हैं। कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो वो भी करवाइएगा, या फिर कोई ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहें तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अगर नाम लेकर शामिल करना है तब भी मैं कर दूँगी, अगर नाम लिए वगैरह शामिल करना है तब भी मैं कर दूँगी, पर अभी जो है वो एक छोटी सी फरमाइश प्रोग्राम में पूरा करते हैं। आप ना सिर्फ हमारे साथ मैसेज के थ्रू प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, ये बताना तो मैं भूल गई, बल्कि आप लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं मेरे साथ। सिर्फ आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते बल्कि मैं भी आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। लेकिन उससे पहले हम मेरा दिल है कि इस गाने की आवाज़ सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभार जो है ना वो गाने भी सुन लेने चाहिए और इनके अल्फाज भी समझ लेने चाहिए, इनके लिरिक्स को भी समझ लेना चाहिए। हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन वो हमारे रिलेटेड नहीं होती, इस बात का ख्याल रखें। हमारे लिए वो सिर्फ एक एंजॉय करने की हद तक है बस। बाकी आइए सुनते हैं ट्रैक को, उस ट्रैक के उस बारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाज को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं आपके प्रोग्राम में। प्रोग्राम हमेशा की तरह आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। अब उसी के साथ साथ एक छोटा सा ट्रैक शाम ने किया था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। और लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बीच में आकर अपनी फरमाइश को भी थोड़ा सा पूरा कर दिया जाए। मेरा भी दिल कर रहा था एक ट्रैक सुनने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फरमाइशों को भी पूरा कर लूँ। बस एक ट्रैक सुनूंगी, उसके बाद आपकी फरमाइश को पूरा करूंगी, ताकि आपको भी पता चले ना कि सलूराज जो है वो किस तरह के ट्रैक सुनते हैं। सुबह आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब। इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। एक बार फिर से बोलूंगी, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलूराज।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समात को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ सुन रहे हैं हमेशा की तरह हमारी और उसी के साथ साथ प्रोग्राम में छोटा सा ट्रैक शामिल किया था अपनी पसंद का। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। उसी के साथ साथ अभी मेरे पास बहुत सी फरमाइशें हैं और मेरे पास टाइम बहुत कम रह चुका है, पर कोई बात नहीं, हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जारी रहेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप किसी को कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें अपनी पसंद का तो आप करवा सकते हैं मैसेज करके। बस उसके लिए आपको हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर नोट करना पड़ेगा, 1157009 लाइव व्हाट्सएप नंबर। ओ हो यार, क्या हो गया, तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करना पड़ेगा, फिर हमें मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज करने के बाद आपको हम तक अपना पैगाम पहुंचाना होगा। वेल, आइए फिर मेरे ख्याल में उस ट्रैक को प्ले कर देते हैं प्रोग्राम में, फिर उसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात, उसके उस पार फिर इस ट्रैक के उस पार फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। सवाल अभी तक इस ट्रैक को सुनिएगा, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। शुरू, शुरू, शुरू, शुरू, शुरू, शुरू, शुरू, शुरू,

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च। अब उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी सी फरमाइश को शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। मतलब उसी के साथ साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.

0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
4: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Espeshul Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
3: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
4: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
3: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
5: You are listening 97.1 FM.
6: You ready?

DJ DRK DJ आप सुन रहे हैं इस वक्त फसा 97.1 FM। बस इतना ही कहना है कि अपनी ज़िंदगी में उम्मीद को जिंदा रखिए, मेहनत को अपना शार बनाइए और दुआ का तामन कभी ना छोड़िए। प्रोग्राम बाकी है, मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुनते रहिए फसा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1। जहां कहीं से आप हमें सुन रहे हैं, अभी मैसेज कीजिए अपने शहर के नाम के साथ, अपने इलाके के नाम के साथ, ताकि हमें भी मालूम हो कि आज रेडियो फजा की आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, मसरूफियत या दबाव का शिकार है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है, और वो है मुस्बत सोच। याद रखिए, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात कितनी लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। इसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल दिन भी हमेशा नहीं रहते। अगर आज आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो हिम्मत ना हारिए, अपने रब पे यकीन रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने वालिदैन की दुआओं को अपनी ताकत बनाइए। बाप, सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का वो ख्वाब क्या है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? अपना जवाब अभी हमें मैसेज कीजिए और मैं आपके मैसेजेस, आपके जवाबात इंशाल्लाह पढ़ूंगा और इन पर बात भी करेंगे। और एक बात, अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुस्बत पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए अब एक और खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं, फिर वापस आकर आपके कमेंट्स में भी शामिल करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए फजा 97.1 एफएम। इस नगमे का ताल्लुक है आज से 20-25 बरस कबल, 90s के दौर से। सुनिएगा और सर धुनिएगा।

एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है नगमा आपको पसंद आया होगा। याद रखें, कामयाब इंसान वो नहीं जिसकी ज़िंदगी में मसाइल ना हो, बल्कि कामयाब वो है जो मसाइल के बावजूद आगे बढ़ना जानता हो। आज का खूबसूरत पैगाम यही है कि अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखिए, अपनी उम्मीद को मजबूत रखिए और अपने रब पे भरोसा कामिल रखिए, कभी कम ना होने दीजिए। अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेडियो फ़ज़ा के साथ जोड़िए।

फजा 97.1 FM के तमाम सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। गाना यकीनन आपको पसंद हो आया होगा। आज के गानों की लिस्ट 90s के दौर से मुतालिक है। आप सुन रहे इस वक्त तुझे देखा तो ये जाना सनम, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है, फसाद 97.1 FM की ऐप को अगर अभी आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फौरन से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाके लिखिए फसाद 97.1 FM, पहले आने वाली ऐप को क्लिक कीजिए।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: ओखाना काय का खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
3: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टोटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यार।
4: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
5: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
4: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
5: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
4: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
5: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
5: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
5: पिशावरी डेरा।
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
8: जी मुगल

0: वेंडर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग प्लास्टरिंग ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स साफ सुथरा काम बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स जगह बदले भरोसा तामीर करें।
2: You are playing. Fazan 97.1 FM.

सुन रहे हैं FM 97.1 FM और प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त आफ्टरनून मिक्स। दुनिया भर में जहां कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं, आप अपनी राय, अपने जज्बात, अपने एहसास, अपने तासुरात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बनने को तैयार हैं, आपकी आवाज हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। सुनते रहिए फजा 97.1 FM। यहां वक्त हुआ है एक खूबसूरत से नगमे का, सुनिएगा और सर धुनिएगा।

आप सुन रहे थे दिल दिया गल्ला। ये गाना था फातिमा की तरफ से, उनकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए एक और गाना डेडिकेट करते हैं सिद्रा मुल्तान से, ए बी ढीलों का मैशअप सॉन्ग है। सुनते रहिए फ़ाज़ा 97.1 FM।

दूसरों की कामयाबी देखकर हसित ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो उसे दे रहे हैं वो आपसे छीन के नहीं दे रहे, बल्कि वो उसका अपना नसीब है। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1। उम्मीद है गाना आपको पसंद आया। अगर आप भी अपने किसी खास के नाम कोई खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं तो आप अभी हमें अपना पैगाम भेजिए, हो सकता है अगली फरमाइश आप ही की हो। सुनते रहिए फजा 97.1 एफएम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1। उम्मीद है कि गाना आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप भी अपने किसी खास के नाम की खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं तो भी अपना पैगाम हमें भेज दीजिए। आखिरी सेगमेंट चल रहा है, मजीद मेरा और आपका साथ 25 मिनट्स का है। आज का सवाल है कि अगर आपको एक हफ्ते के लिए मोबाइल फोन बंद करके सिर्फ अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया जाए तो क्या आप तैयार हैं? अपना जवाब हमें जरूर भेजिए। दिलचस्प जवाब हम अगले हिस्से में जरूर पढ़ेंगे।

दोस्तों एक बात दिल को छू लेने वाली है कि बच्चों से सिर्फ रोज़ाना एक सवाल ज़रूर पूछें कि बेटा आज तुमने कौन सी नई बात सीखी। सवाल से बच्चे को यह एहसास होगा कि घर वालों को सिर्फ उसके नंबरों से नहीं बल्कि उसकी सीखने की सलाहियतों से भी दिलचस्पी है। आज की कहानी है कि एक उस्ताद रोज़ाना क्लास में दाखिल होते वक्त हर बच्चे को मुस्कुरा कर सलाम करते थे। कई साल बाद भी एक तालिबे इल्म ने कहा कि सर मुझे आपका कोई सबक इतना याद नहीं जितना आपकी एक मुस्कुराहट और हौसला अफजाई याद है, इसी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। दोस्तों कभी कभी एक अच्छा लफ्ज़, एक दुआ, एक तारीफ किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। सामीन आपसे सवाल है कि आपके ख्याल में बच्चे की तालीम में ज़्यादा अहम किरदार किसका है? नंबर एक वालिदैन का, नंबर दो असातिज़ा का, नंबर तीन या दोनों का बराबर है? अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। मुंतखब आरा हम अगले सेगमेंट में शामिल करेंगे। सूफी नगमात का सिलसिला चल रहा है इस वजह से कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। आबदा परवीन की आवाज़ में सुनिए।

आप सुन रहे थे फजा 97.1 FM पे, आपदा प्रवीण की आवाज में ये अच्छी पर्दादारी है। हदीका क्यानी अवार्ड याफ्ता सिंगर हैं, उनकी आवाज में सुनिएगा जाने इस दिल का हाल क्या होगा। सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: தெரியும் ஜரா, ஏ கமர்ஷியல் தோ சுன் லே.
1: நாட்டிங்ஹாம் தயார் ஹை ஏக் யாத்கார் பர்ஃபார்மன்ஸ் கே லியே. வே மே தெனு கிட்னா பியார் கர் தியா. 79th Pakistan Independence Day celebration.
2: Ek baat batao to yaadon mein marte ho.
1: Aa rahe hain Nottingham mein Haseeb Hayes and Mukki.
3: Sadde age namaz aage rana le jaam lage si.
1: Apni zabardast live performance aur tracks ke saath.
4: Tenu main mangya hai rab to din raat duaan karke.
1: To bhuliye mat Friday 14th August sham 6 baje se raat ke tak Extension Nawab 527 Lotus Road Nottingham NG51EL apni family aur doston ke sath is shandar celebration ka hissa baniye
5: thak gaya soniye ni sun ke tere laareyan nu
1: ji ek yaadgar sham Pakistan ke naam
6: ek wariya na dil mera tod ke ja.
1: Booking ke liye abhi call kare 07802988615 07715299779. Ek hi stage aur bahut si celebration. Haseeb Hayes aur Mukki ka dhamakedar live performance. Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas aur fresh drinks, sab kuch ek hi jagah.
9: Kyunki jab khana ho zabardast to mood khud hi ban jata hai.
8: To aaj hi visit kare Mood Restaurant, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
9: Har din ko banaye special Mood Restaurant.
8: Taste bhi, vibe bhi.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
13: You are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम कहेंगे, खुश आमदेद, जी हां, सत बिस्मिल्ला, बखैर रागले, अस्ता लविस्ता, आओ गाना दिल तराशा। उम्मीद वासे कि जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदो में मशगूल होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि आज के माशरे में वही लोग कामयाब हैं जो कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं। खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ती बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप थोड़ा सा नाम कमा पाते हैं। पल जनाब मेज़बान उस्मान खान आपके साथ रहेंगे अब से लेकर ठीक दो घंटे तक, और इन दो घंटों में करेंगे हम खूब मौज मस्ती, हंगामा, हल्ला गुल्ला, और साथ साथ आपकी फरमाइशें भी पूरी की जाएंगी। जो लोग हमारे साथ अभी शामिल हो रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने फजा 97.1 एफएम एंड ऐप को ट्यून कर रखा है। इसके अलावा आप मुझे लाइव देख भी सकते हैं। सवाल जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तरीकाकार आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के उससे पहले आपको बताएंगे मेज़बान उस्मान खान प्रोग्राम कर रहे हैं ड्राइव जोन, और इस ड्राइव टू जोन में हम करेंगे खूब जबरदस्त किस्म के म्यूजिक के साथ हल्ला गुला। अच्छा, गाने होंगे आपकी मर्जी के, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ गाने जो हैं वो मेरी मर्जी के भी बीच बीच में आते रहेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के तरीके अगर बहुत ही आसान सा है, जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और डायल पैड को ओपन कीजिए, एक नंबर बताता हूँ, उस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, और फिर व्हाट्सएप पर जाकर मुझे एक प्यारा सा मैसेज जो है वो भेज दीजिएगा। सो जल्दी से नंबर नोट कर लीजिएगा, तो नंबर इज़ 0115-710-0971। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115-710-0971। तो ये वो नंबर है जिस नंबर को आपने नोट करना है, सेव करना है, और फिर व्हाट्सएप पर जाकर अपना खूबसूरत सा पैगाम, कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई सलाम, कोई दुआ, या किसी फिर चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिखकर भेज दीजिएगा। हवा के दुश्मन लहराता, गुनगुनाता, सनसनाता हो आपका पैगाम, जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चकमकाएगा, सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। इसके अलावा थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग आप हमारा साथ दे सकते हैं, उसके लिए आपने गूगल पर जाना है, और गूगल जाकर आपने लिखना है radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमें लाइव सुन लीजिएगा। इसके भी अलावा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ड्राइव करते हो मुझे सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी मुझे ट्यून कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम दर समाधों के, इतनी खूबसूरत से मौसम में, इतने खूबसूरत से वक्त में से थोड़े से चंद लम्हात हमारी नजर करने का। प्रोग्राम में खूबसूरत सा म्यूजिक भी शामिल होगा, और उसके बाद एक अदर प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक भी होगा जिसको लेकर हम साथ साथ चलेंगे। यासर दिल जट, बहुत शुक्रिया आपका। बोल जनाब आप मुझे टिकटॉक पे लाइव देख भी सकते हैं, आरजे उस्मान खान के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे वहां पर लाइव देख लीजिएगा, और साथ देना चाहें तो आप वहां पर भी मेरा साथ दे सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत सी आवाज के साथ। इस आवाज के उस पार होगी आपसे मुलाकात, धूम धड़क के वाला म्यूजिक है, और उम्मीद है कि आपके सभी अरमान जागेंगे। नॉनस्टॉप बॉलीवुड मैशअप है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसको उस पार करेंगे आपसे फिर से मुलाकात, रहिएगा मेरे साथ, हम योर होस्ट उस्मान खान, एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव्स ऑन।

अबे जनाब, उम्मीद देखिए आप ये खूबसूरत से म्यूजिक को जरूर एंजॉय कर रहे हैं। बंदा नचीज़ उस्मान खान आपके साथ है और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड नॉटी गमन इसके गिरदनुमा में, जहां जहां जिन जिन सामातों से मेरी आवाज टकरा रही है। जितने भी सामयीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप तमाम द लिसनर्स को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम ड्राइव जोन। वेल, अगर आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आपसे हमेशा की तरह वही अल्फाज के बी से बी केयरफुल एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। मेरे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो अगर आप घर की तरफ रवाना हैं या फिर घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या फिर आप किसी भी मामले में कहीं भी आ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपसे ये मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम बल्कि ना ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपने जो ड्राइव करनी है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आपकी जान ही कीमती नहीं है बल्कि और भी बहुत सी जानें हैं जो आपकी जान के साथ जुड़ी हैं। वो तमाम तर जानें बेहद कीमती हैं और उनके होने से आप हैं और आपके होने से वो हैं। तो इस वजह से आपको कोशिश यही करनी है कि आप उनके खातिर जो है वो अपना ख्याल रखें। और जनाब, सामीन कहा करते हैं कि छोटी छोटी कामयाबियां भी अहम हैं, ये हमें एतमाद देती हैं और बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। हम लोग अक्सर कहा छोटी छोटी चीज़ें इसलिए छोड़ देते हैं कि ये बहुत छोटी हैं, लेकिन वही छोटी सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कामयाबी की अलामत होती हैं। वो इशारा होता है इस चीज़ की तरफ कि आप कामयाब होने वाले हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी कभी आपको छोटी सी भी नेकी या छोटी सी भी कामयाबी हासिल होती है तो उस पर उसी तरह रिएक्ट करें जिस तरह आप किसी बड़ी कामयाबी पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपने खुद ही अपनी कामयाबी पर खुश नहीं होना तो दूसरों ने क्या। और मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि कामयाबी के पीछे आप कभी भी उन लोगों की कामयाबी की पैरवी मत करिएगा जो लोग चांद पर पहुँच गए हैं, बल्कि उनकी पैरवी कीजिएगा कि जिनके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो गए। जी हाँ, आपके मजाहिब भी इस चीज़ में बहुत मैटर करते हैं। आपकी कामयाबी के लिए आपके मजहब पर भी आपका मुकम्मल एतमाद और भरोसा होना ज़रूरी होता है। और फिर सबसे अहम चीज़ यह है कि मेहनत जो है वो हमेशा आपको कामयाबी के एक कदम करीब लेकर जाती है। जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आप इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि यार बस हमें कामयाबी मिल जाए, हमें कामयाबी मिल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करनी है और मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। बस जनाब, आज के प्रोग्राम में जो है हम, मेरा ख्याल है, म्यूज़िक गाने बस शामिल करेंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक तो हम बिल्कुल भी नहीं लेकर चल रहे और एक तरह से अच्छा ही है। बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू में चल गया, मेरा ख्याल काफ़ी है। अब बेहतर यही है कि आप लोगों को साथ साथ मेरी बातें भी सुनाई देती रहें और साथ साथ पीछे हल्का फुल्का जो है वो गानों की आवाज़ भी आती रहे।

वेल जी, एक वो दौर था कि जब हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी इस चीज़ की कि रेडियो पे जो बोलने वाले लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे बात करते हैं, किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है। इवन देन मुझे अपना याद है कि जब कभी स्टार्टअप में रेडियो सिर्फ सुना करते थे, और क्योंकि जिस दौर में हमने रेडियो ज्वाइन किया उस दौर में सिर्फ रेडियो था। सोशल मीडिया 2016 के बाद जाके कहीं आगे बढ़ा है, उससे पहले जो है वो ज़्यादातर लोग रेडियो पर ही फोकस किया करते थे, उसी को सुना करते थे। तो उस दौर में बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि रेडियो पे प्रोग्राम करने वाले ये जिन लोगों की आवाज़ें आती हैं, ये लोग होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। और मैं तो यहाँ तक सोचा करता था कि कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और हेलीकॉप्टर से एक बंदा उतरता है और वो नीचे स्टूडियो में जाता है और वो वहाँ पर जाकर बोलता है। ये तो जो मैं आप आरजे बन गया था, मैंने पता लग गया। अच्छा, ये सच है कि इस काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे याद है कि जब मैं अपने मुल्क में हुआ करता था तो उस वक्त में जब मैंने नया 2012 में रेडियो ज्वाइन किया था, तो झेलम शहर से मेरा ताल्लुक था पाकिस्तान से, और झेलम से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में प्रोग्राम के लिए मैं जाया करता था। वहाँ पर एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ पर प्रोग्राम किया करता था। और मुझे याद है कि सम टाइम जब बाइक वगैरह नहीं होती थी तो मैं उस दौर में ना वैगने चला करती थी। जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, तो उनके पीछे लटक कर भी जाया करता था मैं। कभी कभार ऐसा होता था कि जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता था और बैठने की जगह नहीं मिलती थी तो लटक के भी जाना पड़ता था। अब मैं उस वक्त जब वो लटक के जा रहा होता था तो मैं सोच रहा होता था कि लोगों को अगर पता चल जाए कि ये जिसकी आवाज़ सुनते हैं वो बंदे इस तरह आ रहे हैं। खैर, बताने का मकसद ये है जनाब कि वो एक वो दौर था और एक ये दौर है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ इनायत कर रखी है, और इसके पीछे अफकोर्स डैट मेरी मेहनत का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली करते हैं। जब आप चीज़ को छोड़ देते हैं, जब आपको छोटी छोटी कामयाबियाँ मिलना शुरू होती हैं और बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही होती, तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, नेक्स्ट किसी स्टेप की तरफ चले जाते हैं, और यही से वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे अक्सर ये बात कहा करते थे कि अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करें और फिर उस गोल के पीछे लग जाएं, सारी मेहनत उस पर लगा दें, एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। बात समझ में आने वाली थी, लेकिन मैं कहता था कि ज़िंदगी में कभी भी एक गोल नहीं बनाओ, कम से कम दो गोल बनाओ, कि अगर अनफॉर्चुनेटली एक गोल मिस भी हो जाए, आप पूरा ना भी कर सके, तो आप थक हार के बैठ ना जाएं, बल्कि आप दूसरे गोल की तरफ चले जाएं। जैसे कहते हैं ना, प्लान ए और प्लान बी, सेम एज इट इज़, आपको कम से कम दो प्लान तो ज़रूर बनाने चाहिए अपनी ज़िंदगी के मुतालिक। खैर जी, गपशप इसी तरह जारी और सारी रहेगी, प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए मैंने म्यूज़िक जो निकाला था, मुझे वो मिल जाए सही, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं आपके लिए ज़रूर शामिल कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो माजरत ही कर सकता हूँ, लेकिन माजरत नहीं करेंगे जनाब, हम शामिल करेंगे एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक, और ये ट्रैक है आप तमाम तर सुनती हुई समाधों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये नेहा कक्कड़ की आवाज़ ज़रूर पसंद आएगी, और ये मेरी तरफ से उन तमाम तर लोगों के लिए है जरिया दो गल्ला तो करना चाहते ने, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड। लीजिए नेहा कक्कड़ की खूबसूरत सी आवाज, सभी खूबसूरत सी समाधों की नजर इस आवाज के उस पार होगी। आपसे फिर से मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान, एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन।

0: हूँ।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Bigger, bigger, and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: जी हाँ जी, वन सेकंड वेलकम बैक, लौट कर आ चुके हैं वापस सुमित के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं भी आपके साथ साथ हूँ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान। छोटी सी प्यारी सी जुनून से कमर्शियल ब्रेक आपने एंजॉय की और कमर्शियल ब्रेक के उस पार मैं आपके लिए एक शाहकार लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत सी आवाज़ के मालिक, खूबसूरत सी पर्सनैलिटी यानी कि उस्मान खान के साथ जो बंदा बैठा हुआ है ना, इनकी आवाज़ तो आपने सुन रखी होगी। इनको प्यार से मौसम अली कहते हैं और गुस्से से क्या कहते हैं यही बताएंगे। मौसम, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। और फजल 97.1 FM की तरफ से आपको इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं।
0: सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे वेलकम कहा मेरे शो के आधे घंटे के बाद, अच्छा लगा आपका वेलकम करना। खैर मौसम, आप तो मेरा ख्याल है छुट्टियाँ मुट्टियाँ भी ढेर ही करते हैं, ठीक ठाक छुट्टियाँ आप करते हैं और करनी भी चाहिए। लिसनर्स आपके नाम से वाकिफ हैं ऑलरेडी और लिसनर्स आपको पहले भी सुन चुके हैं काफ़ी दफ़ा आपकी आवाज़ से, वो वाकिफ तो हैं ही। मेरा ख्याल है कि हमारे व्यूवर्स अभी तक आपसे वाकिफ नहीं हो सके और ये धमाका किसी दिन करेंगे जी, ज़रूर किसी न किसी एक दिन धमाका ये होगा। आपके सामने एक ऐसी शख्सियत लेकर आएंगे जो बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है जिनकी माशाल्लाह खूबसूरत से इनके नैनक्श यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ मेरे साथ जो होंगे,
1: मतलब ताबिश हाशमी बनने की कोशिश कर रहे हैं
0: कोशिश कर रहा हूँ और आई नो कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाऊँगा। ताबिश हाशमी एक ही हैं और किसी सियाने ने कहा था कि हम किसी से जब इंस्पायर होते हैं तो हम उस जैसा क्यों बनना चाहते हैं, उससे बेहतर क्यों नहीं।
1: मुझे लगता है कि इसमें इंसान की कोशिश होती है और कोशिश ही वो चीज़ है जो कॉन्सिस्टेंसी, या कोशिश ही वो चीज़ है जो इंसान को बेहतर बनाती है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंसान को दूसरे से बेहतर होना चाहिए और बेहतर की ही तलाश करनी चाहिए, पर आपकी बातें लग रही थी कि ताबिश हाशमी के शो इन दिनों देख रहे हैं आप।
0: अच्छा, मैं इन दिनों नहीं देख रहा, मैं ताबिश हाशमी को बड़ी देर से देख रहा हूँ, मतलब उनके शोज़ को बड़ी देर से देख रहा हूँ और मुझे पर्सनली वो बंदा बड़ा पसंद है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है वो बंदा, मतलब शायद हम आर्जेस भी उस तरह से बातों में से बातें नहीं निकाल सकते जिस तरह ताबिश हाशमी जो है वो बातों से बातें निकाल लेते हैं और वाकईतन उस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आजकल तो वैसे भी वो बेचारा कंट्रोवर्सी में बड़ा फंसा हुआ है। बाकी हम नहीं जानते उसका मौसम, आप जानते हो?
1: जी बिल्कुल जानता हूँ
0: अच्छा खैर चले जी, ये गपशप तो साथ साथ चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि कुछ चंद एक और पर्सनालिटीज़ का भी बीच में जिक्र किया जाए हमारे प्रोग्राम में और जिनमें से एक पर्सनालिटी जो है वो आरजे उस्मान खान भी हैं। और अच्छा मैं ये हमेशा ये बात लोगों से कहा करता हूँ कि देखें, मैं मुझे ना बचपन से मेरी वालिदा ने यह बात सिखाई थी कि बेटा अपना हर काम खुद किया करना, तो मैं अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ
1: जी बिल्कुल इसी तरह है कि इंसान को मैंने नोट किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी, अपने आप से भी मैंने कभी कभी क्वेश्चन ये किया है कि आया हम दूसरों की तारीफ़ें करते रहते हैं मगर कभी हमने अपनी तारीफ़ क्यों नहीं की। और ये चीज़ मैं मुझे लिसनर से भी पूछनी है कि आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि आप दूसरों की तारीफ़ें करते हैं, वाह आपने ये काम किया, वाह आपने ये काम किया, या मैं वो बंदा फलां बंदा ये अच्छा था, ये काम अच्छा करता है, ये अच्छे तरीके से बोलता है, तो आपने अपनी कभी नहीं तारीफ की? हो सकता है कि आपके अपनी तारीफ करना ही आपके लिए एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा करे।
0: बिल्कुल ये सच्ची बात है, तारीफ तो छोड़िए जी, मैं लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि अगर हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी शख्सियत जो सबसे ज़्यादा माफ़ी की जिससे हम हकदार होंगे ना, वो शख्सियत हमारी अपनी ज़ात होती है जिससे हम सबसे ज़्यादा माफ़ी के तलबगार होते हैं, यानी कि हम अपने साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं और हंस के डाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लोगों से माफ़ियाँ तो छोड़ ही दीजिए, पहले आप अपनी ज़ात के अंदर जान के देखिए कि आप उनसे कितनी माफ़ी के तलबगार हैं। बाकी रही बात करने की, उसको क्या कहते हैं जो आप कह रहे थे, ख़ुद को शाबाशी देने वाली बात, तो हम अपनी तारीफ़ तभी नहीं करते क्योंकि ये काम हमने दूसरों को दे रखा होता है। और जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी बुराई खुद नहीं करता, ये काम मैंने दूसरों के ज़िम्मे लगा रखा है और वो बिना तनख्वाह के बड़े अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। आप भी ऐसे करते हैं?
1: जी शायद मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है, पर मुझे आपकी बात ने एक बात की थी जो आपने, उसने इंस्पायर किया कि इंसान हर एक चीज़ के लिए वक्त निकालता है, घर वालों के लिए वक्त निकालता है, अपने एजुकेशन हासिल करने के लिए एक वक्त, अच्छा खासा ज़िंदगी का वक्त निकालता है, कमाने के लिए वक्त निकालता है, मगर एक दिन या एक लम्हा अपने लिए नहीं जीता या अपने लिए नहीं निकालता। तो ये भी चीज़ इसी चीज़ में ही आती है, मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने आप की तारीफ करता है तो अपने आप के लिए वक्त भी निकाला करे। अब वक्त निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर मिसाल के तौर पर अगर आप नेटवर्क चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो आप उस पर भी आप ऐसा करें कि चलो यार कोई ऑनलाइन काम करने का तरीका ढूंढ लें, ये वक्त नहीं है। वक्त ये है कि आप अपनी इंजॉयमेंट देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, एक दिन हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा निकालें जिसमें आप खुद उसको ना इंजॉय करें, और ये आपके लिए सेहत के लिए भी और मेंटली भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा वीक बंदे का इस तरह गुजरता है कि काम काम और बस काम। और जो स्टूडेंट है उनका भी इसी तरह होता है कि स्टूडेंट लाइफ में भी इसी तरह होता है, स्टडी करना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, इसी तरह फिर बाकी भी स्टडी करना। और जो हमारी तरह परदेसी स्टूडेंट हैं और वो भी इसी तरह ही करते हैं तकरीबन, के वो पार्ट टाइम जॉब्स में होते हैं, पूरा वीक बिजी रहते हैं, और उनकी भी मेंटली फिर वो अपने आप को अगर वक्त देंगे तो वो उनकी मेंटली भी और हेल्दी एक्टिविटी भी इसी तरह होगी। और वैसे भी मैं अक्सर, अगर जो लिसनर पुराने हैं सुनने वाले हैं उनको पता होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप वॉक करते हैं, डेली वॉक करते हैं या कोई भी हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं।
0: बिल्कुल ऐसी बात है जी। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपसे जैसे कही ना कि हमारी अपनी ज़ात है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज के माशरा इस तरह का बन चुका है कि लोग अपने लिए नहीं अपनों के लिए डरते हैं, सबसे अहम चीज़ ये होती है, और हम लोग हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं हर चीज़ पे, लेकिन कभी भी अपनी औलाद और अपने माँ बाप पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ जिस ज़ात पर किया जाता है ना, वो अपनी ज़ात होती है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अगर हमें नॉर्मल सी कहीं कोई तकलीफ़ भी होती है तो हम कोशिश करते हैं इसे अवॉइड करें, अच्छा ठीक है हो जाएगा, डॉक्टर के पास शाम को जाऊँगा, कल जाऊँगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि अल्लाह ना करे आपके बच्चे को कल को कुछ होता है, आपकी वालदा को, आपकी मिसेज को, किसी को भी, तो क्या आप कहेंगे अच्छा बाद में चले जाएंगे या कल चले जाएंगे?
1: जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसी तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमारे लिसनर भी इस चीज़ से एग्री होंगे कि वाकई ये बात आज कोई सियानों वाली गा रहे हैं।
0: अच्छा मेरे बारे में तो उन्हें यकीन है, आपके बारे में डाउटफुल थे।
1: चलो जी आस्ता आस्ता हमारे बारे में यकीन हो जाएगा जब हमारी आवाज ये लिसनर रोज सुना करेंगे और हमारी फैमिली का हिस्सा डेली बना करेंगे। ये नहीं, जो जो इस वक्त नए शामिल हुए हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली का डेली हिस्सा बना करें। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ बंदे को मिल जाती है सुनने को कि जो अगर अपनी ज़िंदगी में बंदा अडॉप्ट करे तो वो हो सकता है कामयाब हो। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सारी बातें हमारी माना करें, अपने आप की भी माने। ये नहीं बात है कि आप हर बात एक आरजे की, या कोई भी लिसनर अगर आप किसी ऐसे चीज बंदे को आप सुनते हैं या देखते हैं तो उसी की हर चीज़ अडॉप्ट करें। आपको अल्लाह ने मेंटली एक सोचने समझने की दी है वो।
0: बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स आपके मेंटल हेल्थ इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ सोच सकें। और सबसे बेहतरीन मौसम आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमें जैसे आप कह रहे थे ना कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, ये अपने लिए वक्त निकालने के बारे में सोचना ही इस बात की अलामत होती है कि थोड़ा दिमाग ठीक है। दूसरी तरफ से जाकर मैं ये नहीं कहता कि आप मुकम्मल तौर पे सारा के सारा वक्त जो है वो खुद को दे दें, एटलीस्ट आप इतना एक टाइम टेबल सेट कर लें कि वीक में ना सही, एटलीस्ट मंथ में कोई एक दिन ऐसा 24 घंटे का होना चाहिए जो महज आपकी ज़ात की हद तक हो, जिसमें आपको पता है कि आपने सुबह निकलना है, आवारागर्दी के लिए निकलना है, जो जी में आता है वो करना है, जो दिल करता है वो खाना है, जहाँ दिल करता है घूमना फिरना है। और अगले दिन जैसे हम अक्सर अवकात वीकेंड पे कहीं जाने का प्लान कर लेते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कोई एक आध ऐसा वीकेंड रखे जिसमें आपको ये पता हो कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, सब कुछ आप हैं, आपने अकेले ही सब कुछ करना है, रैंडम लोगों से मिले, रैंडम लोगों से गपशप करें, उनसे बातें करें, लोगों को जानने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें लोगों की जिंदगियों में चल क्या रहा है। मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी परेशानियां तकलीफें होंगी ना, रैंडम लोगों से बात करके आपको लगेगा कि यार आप तो बड़े खुश हैं, आपकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही है। वो क्या था वो गाना इंडिया का, जब मेरे जहन में आया मैं सुना दूंगा, जब भाई नहीं सुनाता मेरी मर्जी। नहीं अभी वाकईतन वो मैंने अक्सर ये बात मौसम आपको पता है मैं कहा करता हूँ कि मुझ में और गजनी में ना सिर्फ बालों का फर्क रह गया है, बाकी हम दोनों सेम टू सेम लिटरली जहन में बात होती है वो जबान पे आते आते भूल जाता हूँ, खत्म हो जाती है। और इवन देन मुझे किसी ने कहा था कि आप बादाम खाया करें, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। पिछले एक महीने से मैं बादाम कहाँ रखे हैं भूल गया हूँ बादाम तक मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ रख दिए। सो ये मामला चल रहे हैं। वेल मौसम मुझे पता है कि आपके जहन में बहुत सी बातें हैं और जबान पे वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने लिसनर्स के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाना निकाल के रखा हुआ है वो इनको ज़रूर सुना दूँ, जो कि रईस मूवी से लिया गया और शाहरुख खान पे पिक्चराइज हुआ ये खूबसूरत सा ट्रैक। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इस खूबसूरत सी आवाज को एंजॉय कीजिए कि इस आवाज के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान विद मौज़ूम अली। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ट्राइब जोन फजा 97.1 FM एंड आल्सो डेप।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

अच्छा जी, उन तमाम समातों को मेरा प्यार से वेलकम जो इस वक्त नए मेरे साथ शामिल हुए हैं। और आपको बताता चलूं कि आप सुन रहे हैं फदर 97.1 FM एंड डैब लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। और जो इस वक्त अभी तक सब्र व तहम्मुल से हमारे साथ शामिल थे, उनको पता है कि हम बात कर रहे थे उन आदात की जो हमारे, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें तो ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है कि वाकई ये एक ज़िंदगी है। और हम ये भी बात कर रहे थे कि अपने आप से बंदा क्या क्या बातें कर सकता है और अपने आप से ज़िंदगी, अपने आप के लिए ज़िंदगी किस तरह जी सकता है। और साथ साथ आपके भी मैसेजेस शामिल हो रहे हैं और आपके भी राय ले रहे हैं हम। और प्यार भरे सॉन्ग्स भी प्ले कर रहे हैं। और आपके भी अगर कोई डिमांड है, कोई भी किसी के नाम कोई पैगाम है, या आपकी भी ज़िंदगी में आपने वक्त किस तरह गुजारते हैं वो हमें अगर बताना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जो नए शामिल हुए हैं उनको बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। अपना प्यारा सा मैसेज, अपना प्यारा सा पैगाम, अपने शहर का नाम और अपना नाम के साथ हमें सेंड कर दें। जैसे ही आपका मैसेज हमारे तक पहुंचेगा, हम अपने दिलों की आवाज़ों तक आपके मैसेज हम सबको पहुंचाएंगे।

साथ साथ बातें भी चलेगी, साथ साथ सॉन्ग्स भी चल रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक प्यारा सा कोई अच्छा सा रीमिक्स सॉन्ग्स ढूंढूं और आपकी नज़र करूं, नज़र नहीं समातों के लिसनर को सबको सुनाऊं। और मैं तमाम आने वाले न्यू लिसनर्स को अब फजा 97.1 FM की तरफ से वेलकम कहता हूँ और आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए एक दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। साथ साथ आपके मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है और मैसेजेस भी कुछ देर बाद मैं शामिल करूंगा। और मुझे पता है कि जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी तक कोई मैसेजेस शामिल नहीं किए गए, तो आप टेंशन ना लें, हम मैसेजेस भी शामिल करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे और साथ साथ सॉन्ग्स भी चलाएंगे।

अच्छा जी, इस सॉन्ग्स के बाद वापस आपके समातों के नज़र होंगे और मैसेजेस साथ साथ आप करते जाएं। और आज का सवाल यह है कि आपने अपनी ऐसी कौन सी आदत अपनाई जो आपके लगता है कि आपको अपने आप का शुक्रिया अदा करना चाहिए और वो आदत पे आप अपनी ज़िंदगी में अभी भी अडाप्ट की हुई है। जैसा कि आप कुछ बंदे होते हैं जिन्होंने सुबह उठ के रोज़, पहले उनकी आदत थी कि वो लेट नाइट तक जागते थे और सुबह लेट उठते थे और अब उन्होंने एक हेल्दी एक्टिविटी करना शुरू कर दिया, वॉक करने पे जाते हैं या कोई भी जॉगिंग पे जाते हैं या कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी करते हैं जो उनके सेहत उससे पहले से बेहतर होना शुरू हो गया, वो बोरिंग महसूस नहीं करते, थकावट नहीं महसूस करते। और मिलते हैं सॉन्ग्स के बाद और फर्दर इस चीज़ों पे बात होगी और आप जुड़े रहें हमारे साथ।

अच्छा जी, वेलकम बैक, वंस अगेन वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड डैब। अच्छा जी, बहुत प्यार से हमेशा हमने शामिल किया और साथ साथ हम शामिल करते जाएंगे। और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं और आपको बताते चलूँ कि नए आने वाले को बताता चलूँ कि आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड डैब लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। और वेलकम टू आवर फैमिली। मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ नए आने वाले को बताता चलूँ कि आपको भी मैसेज कर सकते हैं। और आज का हमारा सवाल है कि आप ऐसी कौन सी आदत है जो जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने ये आदत अपनाई। मैसेज करने का तरीका वही पुराना और आपको बता चलूँ, नंबर रिपीट कर दूँ 0115710097। इसके अलावा आप हमें एप्लीकेशन के ज़रिए भी सुन सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM। दोनों प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सुन सकते हैं प्यारे प्यारे आरजेस को। आरजे को सुनने के साथ साथ आप वहाँ से भी हमारी वेबसाइट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है radiofaza.co.uk। वहाँ पे आपको मिलेंगे आरजे के शेड्यूल, कब कौन सा आरजे कहाँ और किस टाइम पे परफॉर्म करता है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके लिए एक अच्छा सा पंजाबी मेशअप रखूं और ताकि आपको एनर्जेटिक फील हो। और आप अपने आप से सवाल तो कर रहे होंगे और अपने दिल पर हाथ रख के एक बार जिन्होंने नहीं अभी तक किया वो करें कि आपने ऐसा कौन सा आदत अपनाई जिस पे आपको लगता है, आपको फ़ख्र भी है और आपको लगता है कि मैंने अपना आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये आदत मैंने अपनाई।

आप उन ये जो मेशअप है उन तमाम पंजाबी सिख ब्रदर्स के नाम या जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं चढ़ते पंजाब या लेंदे पंजाब से आपके तमाम के नाम और साथ साथ हिंदी भी मेशअप है जॉइंट कोलेबोरेशन इसलिए है कि हम सबको लेके चलते हैं और कोई ये ना सोचे कि आज हमारे ही नाम का कोई चीज़ ऐड नहीं की गई ऐसा भी बात नहीं है हम कोशिश करते हैं कि हम सबको लेके चलें क्योंकि मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये एक फैमिली है

और मेरी नज़र में ऐसे बहुत से बातें हैं जो अभी आने वाले वक्त कुछ देर तक मैं आपसे करना चाहूँगा, और कमर्शियल का भी टाइम नज़दीक आन पहुँचा है, तो आप इंजॉय करें ये प्यारा सा मेशअप, पंजाबी मेशअप, और ब्रेक के उस पार हम फिर शामिल होंगे आपके साथ और आपके मैसेजेस शामिल करके। तब तक जिन्होंने अभी तक मैसेजेस नहीं किए, आप कोशिश करें कि आप भी मैसेज करें और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय जो है हमारा हमें एक अलग सी खुशी देती है, क्योंकि आपकी राय से ही हमें पता लगता है कि हमारे साथ भी एक फैमिली मौजूद है, और अपने होने का एहसास हमें ज़रूर देना है। दोनों का तरीका वही पुराना, नए आने वाले को दोबारा बताता चलूँ कि आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और मैसेज में अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना प्यारा सा पैगाम ज़रूर भेजिए और अपने होने का एहसास दीजिए और इन्जॉय करिए ये प्यारा सा मेशा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

आवर जीवन से वेलकम बैक आज के लौट के वापस एक छोटी सी प्यारी सी चुनमुन सी कोशिश के उस पार एक खूबसूरत सी आवाज़ आप सुन रहे थे और इसी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान उस्मान खान मजीद आगे इस आवाज़ को लेकर चलेगा। और अब हमारे आपके दरमियान जो है वक्त बड़ा कम सा रह गया और इस वक्त को मजीद खूबसूरत आप लोग अभी भी बना सकते हैं प्रोग्राम में शामिल होकर। शामिल होने का तरीकाकार बारहा बता दिया गया है लेकिन उन लोगों को भी बताएंगे जिन लोगों ने अभी फजा 97.1 FM या डैप पर हमें ट्यून किया है। जनाब आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और उसमें बल्कि इस प्रोग्राम में चार चांद लगा सकते हैं शामिल होके। करना आपने बस इतना है कि मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए, जो नंबर मैं आपको बताता हूँ उस नंबर को नोट कीजिए, फिर सेव कीजिए और फिर व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिए। आपके और मेरे दरमियान जो नंबर होगा उसको कहेंगे 01157100971। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुन सकते हैं radiofaza.co.uk पर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM। प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप हमें डैप पर भी ट्यून कर सकते हैं। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट चल रहा है और लास्ट सेगमेंट में हमेशा कोशिश करता हूं कि पंजाबी ट्रैक्स पर हो और पंजाबी ट्रैक्स आप भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सके। और कभी कभी कोशिश करना कि मैं पे भी थोड़ा सा पंजाबी गल करा लेकिन मेरी पंजाबी इतनी चंगी कोई ना कि मैं थोड़ा ना पूरी गल पंजाबी विच कर सकां, लेकिन कोशिश करना कि पंजाबी दी लत्ता बावां ना मेरे को टूट सकन, मैं हल्का फुल्का पंजाबी विच गप शप ला लां। हल्की फुल्की वैसे होंदा, हल्का फुल्का तो नहीं होंदा। एक कभी कभी मेरे अंदर ना पठानों वाली रूह आई जाती है और फिर मैं मुजक्कर मोनस थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो जाता है, तो नज़रअंदाज कीजिएगा। बाकी मेरे जितने भी पठान भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम जा ही रहे हैं तो फिर म्यूज़िक भी वो थोड़ा सा ना वो यू नो सेंटी टाइप तो है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मज़ीद चेंज करके ज़रा अच्छे वाला करते हैं ताकि हमारा मूड जो है वो फ्रेश रह सके। आखिर जनाब बात कर रहे थे इससे पहले मौसम जो भी आपसे आपके मैसेजेस शामिल करने के हवाले से, कुदरत हमारा साथ देते हैं, नॉटिंघम से हैं और कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों भाइयों की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। ओके थैंक यू सो मच जी, और बाकी आपका मैसेज स्किप करना पड़ेगा, समझा करें ना। वो कहते हैं ना कि हर बात नहीं होती बताने के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते, हर शख्स नहीं होता हर बात के काबिल। कभी कभी मेरे अंदर ना कुछ शायरों वाली रूह भी आ जाती है और जब कभी शायरों वाली रूह मेरे अंदर आ जाए ना तो फिर मैं शायरी बोलना शुरू कर देता हूँ। अब मुझे शायरी से कुछ खास जान पहचान मेरी नहीं है लेकिन कभी कभी अच्छी पढ़ भी लेता हूँ। सो अगर आप अपने प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम में बल्कि आप ही का प्रोग्राम है आप शायरी भी हम तक पहुँचाते हैं तो हम उसको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। खैर जी तेनु सूट सूट करदा गुरु रंधावा की आवाज़, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। इस आवाज़ को सुनेंगे, इस आवाज़ के उस पार जब अपलोड करेंगे फिर मज़ीद आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ढूंढ करने में रहेगा मेरे साथ साथ हम ये होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव ज़ोन।

जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं गुरु रंधावा की आवाज़, और जो दूसरी आवाज़ सुन रहे हैं उसको कहते हैं उस्मान खान की आवाज़। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। प्रोग्राम में अहतमाम की जानब रवा दवा है और अपनी भी बैटरी थोड़ी सी लो ही होने वाली है। खैर जी, मेरे तमाम तरह अंकल और आंटी जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे सुन रहे हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपकी आपके दौर के गाने प्रोग्राम में शामिल ना करूँ। जी हाँ, 90s के ट्रैक भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं कभी भी अपने अंकल और आंटीज को मिस नहीं करता। मैं आपका गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस गुजरे हुए वक्त की कुछ यादें हैं जो आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप प्रोग्राम में शामिल हो। अगर आप मैसेज नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट कॉल पर भी मेरा साथ दे सकते हैं। मैं आपको नंबर बताता हूँ, उस नंबर को सेव कीजिएगा, नोट कीजिएगा। या आपके पास कोई भी बंदा हो तो उसे कहिएगा कि इस नंबर को सेव करके मुझे कॉल मिला दे, लेकिन आज के प्रोग्राम में नहीं, अगले प्रोग्राम के लिए। जी हजर, 90s के ट्रैक, और उम्मीद है कि ये ट्रैक्स आपको आपकी ज़िंदगी के वो लम्हात तो नहीं लौटा सकते, लेकिन ये कम से कम आपको कुछ गुड मेमोरीज जो आपकी हैं वो आपको याद ज़रूर दिलवा सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में कोई ना कोई एक काम ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा कि कल को बुढ़ापे में जब आप किसी जगह पर बैठे हों, सोचों में गुम हों, तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ जब याद आए तो आप उस चीज़ को अच्छे से याद करके खुश हो सके कि चलो कोई तो चंगा काम कीता सी ना। आप लोगों से कहा करता हूँ ना कि हुस्न के पीछे कभी मत भागिएगा, इसने एक ना एक दिन ढल जाना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख्स को अपने लिए चुनते हैं तो कोशिश करें कि वो वफादार हो। जवान पता नहीं वफापे की वो टक जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं बेवफा हूँ, बस वो कभी कभी वफा, ये वो लफ्ज़ है ही बहुत भारी। हम लोग ने इसको बड़ा आम सा एक लफ्ज़ समझ रखा है, ये आम लफ्ज़ नहीं है, इसका एक अपना हजूम और एक अपना वज़न है। हाँ, लेकिन वो समझने वाले लोगों को समझ में आती है। वो कहते हैं ना, समझ ना ले समझ गए थे, ना समझानो की। हाँ जी हाँ जनाब, अब है जुदाई का मौसम। तो जुदा होने से पहले तमाम तरह सुधरी समातों से कहना चाहेंगे बेहद शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मेरा साथ निभाने का। उम्मीद वासी है कि आज के प्रोग्राम में अगर मुझसे कोई गलती गुस्ताही हुई तो आप अपना छोटा प्यारा भाई समझकर उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। पार्ट ऑफ जोक। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बढ़ रहा है, और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। जिंदगी और सांसों में वफा की, तो कल आपसे दोबारा होगी सेम प्लेटफॉर्म सेम टाइम पे दोबारा मुलाकात। दोबारा दो दफ़ा हो गया, चलता है। ऑलराइट, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका, मेरा और सबका अल्लाह निगेबान।

फिर हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नॉटिंगम, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम और मैं हूं आपका होस्ट जलाल बुखारी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूडी मंडेज वंस अगेन. आई एम बैक फ्रॉम टुडे और 7 से 9 बजे तक ये जो है सीक्वेंस चलेगा और बहुत ही एक लंबी ब्रेक रही, बहुत ही लंबा वक्फा रहा, लेकिन उम्मीद है कि हम जो है अपने इस फोकस को मेंटेन करने में कामयाब होंगे. आज का जो शो है वो स्पेशली मैं डेडिकेट कर रहा हूँ वन एंड ओनली सनम मारवी को. और सनम मारवी को हम इस शो को क्यों डेडिकेट कर रहे हैं ये आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप लोगों को जानना चाहिए कि जी सनम मारवी आ रही हैं नॉटिंगम में. जी हाँ बिल्कुल, इस 14 अगस्त को सनम मारवी विल बी परफॉर्मिंग लाइव इन नॉटिंगम एट एक्सेलसियर सुइट्स. तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने देना. और सनम मारवी ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड सिंगर, मोस्टली वो सूफी सिंगिंग करती हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो उनके ट्रैक्स हैं. उनके ट्रैक्स भी आज हम प्ले करेंगे और आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है ये भी आप बताएंगे, वो मैं आपके लिए प्ले करूँगा. आप तब तक ये सुनिए बहुत ही खूबसूरत लागे बिना चल मेले नू चलिए साईं ज़हूर एंड मारवी.

0: रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
7: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
8: जी वेलकम बैक नॉटिंघम, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूं आपका होस्ट जलाल बुखारी। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज का जो हम प्रोग्राम है वो डेडिकेट कर रहे हैं सनम मारवी को, और सनम मारवी के हम सुनेंगे गाने। और आप लोगों ने अपनी टिकट्स जो हैं वो अगर नहीं खरीदी हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपनी टिकट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़रीद लें ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। इस 14 अगस्त को बहुत ही खूबसूरत मेला सजने वाला है एक्सेलसियर स्वीट्स में। एक खूबसूरत गाना मिट्टी दी ढेरी फ्रॉम सनम मारवी, इंजॉय कीजिए।

जी, सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, और उम्मीद है कि आपने ये ट्रैक एंजॉय किया होगा। और आप सुन रहे हैं मूडी मंडे सजलाल बुखारी के साथ रेडियो फज़ा 97.1 FM। और आपको सनम आरवी का कौन सा गाना अच्छा लगता है वो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन जी एहसन कहते हैं लवली ट्रैक, थैंक यू सो मच एहसन फॉर योर मैसेज। और मिसबा का मैसेज आया और वो कहती है हर वॉइस गिव अ डिफरेंट लेवल ऑफ टू दिस कलाम। बहुत ही खूबसूरत, वाकई ही एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और आपको बताते चलें कि जी सनम मारवी जो है वो आ रही हैं नॉटिंगम में 14 अगस्त को, तो आप भी जो है वो उनको लाइव सुन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। टिकट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, जो कि टिकट्स आर अवेलेबल ऑन excelsiornawab.co.uk, एक्सेलसियर नवाब की वेबसाइट से आप ये टिकट्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल टिकट प्राइसेस हैं, और दे स्टार्ट फ्रॉम £20, चिल्ड्रन अंडर 12 £10, £10, £20, एंड VIP मीट एंड ग्रीट विद सनम मारवी इज £100। तो बहुत ही रीज़नेबल टिकट्स हैं, और बहुत ही जो है वो एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान। तो सनम मारवी की बात की जाए, ऑब्वियसली कि हम जानते हैं कि बहुत ही यंग एज से उन्होंने गाना शुरू किया, फ्रॉम द एज ऑफ 7 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ज़्यादातर जिन जो उनको एक शोहरत मिली, जो उनको नाम मिला, शी स्टार्टेड ऑफ एज सिंधी फोक सिंगर, सो शी वॉज यू नो used to sing folk songs and she was into folk music because unke jo father the Fakir Khan Muhammad sahab wo bhi ek Sindhi folk musician the aur harmonium bajate the to wahan se obviously from home Sanam Marvi ko jo hai ye inspiration mili aur wahan se unhone jo hai apna music career ka aagaaz kiya। और उनके उस्तादों में जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ वो आबिदा परवीन को अपनी रूहानी उस्ताद मानती हैं। और यू नो हर डेब्यू वाज लाइक यू नो मेन स्ट्रीम डेब्यू स्टार्टेड इन 2019, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2004 एंड 2005 में थिएटर परफॉर्मेंसेस दी थी रफ़ी पीर थिएटर के साथ। और देन ऑब्वियसली उनका जो मेन डेब्यू हुआ टू पाकिस्तान टेलीविजन वो विरसा हेरिटेज है, जो यूसुफ सलाहुद्दीन नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ से इनका जो है वो आगाज़ हुआ। और वहाँ से ही उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सा म्यूज़िक किया, जो विरसा हेरिटेज के लिए बहुत सारे गाने गाए, और उसके बाद कोक स्टूडियो के लिए उनके बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्स हैं, तो कोक स्टूडियो में भी उन्होंने बहुत से गाने गाए हैं। तो बिल्कुल जी, सनम मारवी यू नो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फीमेल वोकल्स ऑफ पाकिस्तान, एक्सक्यूज मी, वो नॉटिंगम में मौजूद होंगी। एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं चाहूँगा कि उसको कम्प्लीट करें। इश्क नमाज आबिदा परवीन और सनम मारवी, खूबसूरत आवाज़ों में।

और उम्मीद है कि आपने इस गज़ल को इंजॉय किया होगा जितना मैंने किया है. मैं भी इधर बैठ के आई थिंक गज़ल को सुन रहा था और थोड़ा सा रिपीट पे भी लगा दी. इतनी खूबसूरत लिरिक्स, इतने खूबसूरत अल्फाज और दिल को छू लेने वाले, और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे. नंबर टू कॉल 0115710097 आपका जाना पहचाना नंबर है. इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सनम मारवी के हवाले से आप बात कर सकते हैं, शो के हवाले से बात कर सकते हैं. होने जा रहा है नॉटिंगम में, और क्या ख्याल है आपका कि कैसा होगा शो, कितना ज़बरदस्त होगा, कितना नहीं होगा, और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे. कौन कौन जो है वो इस शो में जा रहा है, किस किस ने टिकटें ख़रीद ली हैं, और कौन है जो टिकटें ख़रीदने वाला है, तो मुझे आपने बताना है. और एक और बहुत ही खूबसूरत कलाम है, वो आप लोगों की समातों की नज़र करते हैं. उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा.

नॉटिंगम, तो सनम आरवी जो हैं वो आ रही हैं नॉटिंगम में और लाइव परफॉर्म करेंगी और आपके फेवरेट ट्रैक्स जो हैं वो आपको सुनाएंगी. जो नोटेबल अवार्ड्स हैं सनम आरवी की, ऑब्वियसली एक पर्सनल लाइफ है, वो भी कुछ अर्सा पहले तक, लाइक अराउंड 2020, अर्ली 2020 पोस्ट बिफोर कोविड थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी रही उनकी लाइफ के हवाले से, बट शी इज़ माशाल्लाह सेटल डाउन नाउ. और अगर यस नोटेबल अवार्ड्स की बात की जाए तो शी हैज़ वन अ यूनेस्को अवार्ड फॉर 9th इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल जो कि समरकंद में हुआ था. शी इज़ द सेकेंड आर्टिस्ट आफ्टर नुसरत फ़तेह अली खान टू हैव वन दिस अवार्ड. ऑब्वियसली एक बड़ी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ी जो है अचीवमेंट है. और इसके साथ साथ जो है उन्होंने उनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला जो एक ऑब्वियसली वन ऑफ द highest or one of the prestigious awards in Pakistan jo ke Pakistan ke president of Pakistan ki taraf se diya jata hai. To jo pehla award tha UNESCO award at the 9th international music festival ye inko mila tha 2013 mein aur 2020 mein inhe tamgha imtiaz se nawaza gaya jo ke ek again bahut badi achievement hai. 2011 mein inhe latif award mila aur ek aur jo bada award inko mila wo 17th PTV national award tha 2012 mein. And she was ranked as best singer in light music जो कि वर्सा प्रोग्राम वो करती रही ही कर रही थी पाकिस्तान टेलीविजन पे, जिसकी वजह से और जिसकी बुनियाद पे उनको जो है वो ये अवार्ड मिला था. अपने मेज़बान को अजलाल बुखारी को दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट मंडे आपसे मुलाकात होगी. टाइम का थोड़ा सा आज वो रोला सा हो गया था, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट वीक इट विल बी 7 to 9 PM, 7 to 9 PM तक इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा. तो 7 PM नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. और वंस अगेन मैं यही कहूँगा, जिस जिसने इस 14 अगस्त के इवेंट की टिकट्स नहीं ली वो टिकट्स ले लें, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो सी यू गाइज़ देयर.

0: بتاعهم احتياري زرا. ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसीब हेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइको एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस मॉल स्ट्रीट नॉटिंघम एंड 7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking

0: We are playing Fizzan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हूँ शहरादे तक।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention,
4: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंद।

0: you'll love.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
5: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Espeshul Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
4: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
5: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
4: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
6: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया।
3: ओ मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दे, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0471 3677.

0: commercial time.
1: Ohana, kai ki khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972 ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.

0: पर आप भरोसा कर सकते हैं
1: जी। मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
2: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.8।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you are running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।